सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम जी बोलो। नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो। नित्य नित्य जप